कदीम तरी के तक जानू कदीम का कदीम सजनू तक दीम तरी के तक जानू कदीम का कदीम